0: मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत है। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि यह पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेस्सी ने किए। इसके साथ ही मेस्सी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: भूज केन्द्र छे स्वतंत्र प्रस्तुत छे विचार बिंदु अहंकार पठन धारा अधिकारी
3: विचार बिंदु ना करिश अभिमान।

0: बच्चियां कहीं समाप्त करी छी। आप सुनी ने भोज केंद्र नु प्रसारण आप संभाली रहा छो। हमें प्रस्तुत छे कृषि माहिती संदर्भ साहित्य पर आधारित और माहिती नो विषय छे कठोर में कल्चर नो उपयोग।
1: રાઇઝોબિયમ કલ્ચરની વાત કરીએ તો કઠોર પાકો

अश्विनी भोज केन्द्र से प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान स्वर अभिनय सुरेश वाडेकर रविन्द्र साठे।

हनुमान से युद्ध हो रहा है। इसी समय वानरों को माया के प्रभाव से युद्ध भूमि में असंख्य रावण देखने लगते हैं। ये देख वानर भालू त्राही त्राही करते हुए रक्षा के लिए प्रभु की शरण लेने भागते हैं। उनका भ्रम दूर करने के लिए श्री राम एक ही वाण से माया जाल छिन्न भिन्न कर देते हैं। फिर वहाँ एक ही रावण को देखकर सारा वानर समूह उस पर टूट पड़ता है। रावण अब हनुमान अंगद नल और नील से युद्ध कर रहा है। इसी समय वो आकाश में एकत्रित देवताओं को देखता है जो श्री राम का जय घोष कर रहे हैं। वो उन्हें लक्ष्य कर वाण चलाने लगता है। उधर श्री राम के वाणों से कट कट कर उसके सिर और भुजाएं इधर उधर उड़ रही हैं। लेकिन कटने के साथ ही वे फिर उग आते हैं। वो अपनी विशाल भुजाओं से वानरों के समूह उठाकर मसल देना चाहता है कि तभी वृद्ध जाम्बवान के भरपूर पद प्रहार से मूर्छित होकर एक बार फिर धरती पर

0: जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: संप्रति G7 शिखर सम्मेलन स्वस्य सहभागिताया उल्लेखं कुर्वन् सः अवदत् यत् राष्ट्रिय हितं सर्वोपरि स्थापयितुं भारतस्य अभिजात प्रतिबद्धतां वैश्विक नेतारः स्वीकृतवन्तः।

dapat mengatakan harga teratur pada jalanan virudhan FIR itu penjagaan taha. Tesu tetara cha nirabitaha. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निर्देशानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण से अग्निशामक विभाग से विद्युत विभाग से चार अधिकारी निलंबित अभवन लखनऊ नगरे अग्नि घटनाया संदर्भ अलीगंज नगर से आरक्षक बीएनएस तथा उत्तर प्रदेश अग्निशामक सेवा अधिनियम सेन्तर्गत प्रासंगिक खंडेश षट अभियुक्ता अन्यान च उत्तरदायी जनाना विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत अस्ति यहां दुखद अग्नि प्रकोप अभवत तस्मिन् भवने अनधिकृत निर्माण से विषय षोडशाधिक द्विसहस्रतमे वर्षे विध्वंसादेश प्रसारित आसीत परंच मासद्वयाभ्यंतरे एव आदेश निरस्त अभवत एतदतिरिच्य राज्य सर्वकारेण अग्नि घटनाया उच्चस्तरीय अन्वेषण से आदेशोपि प्रदत्त घटनाया अन्वेषणार्थ एसआईटी इति विशेष अन्वेषण दलस्य निर्माणमपि कृतमस्ति दलं सप्त जनेषु एव स्वस्य प्रतिवेदनं समर्पयिष्यति ह्यः अपराह्णे दुखद अग्निघटनायां न्यूनातिन्यूनं पञ्चदश जनाः मृताः तेषु अधिकतया षोडशतः पञ्चविंशति वर्षीयाः छात्राः आसन् अलीगंज नगरस्य पुरेनिया क्षेत्रे एकस्य आपणस्य उपरि कार्यरते एनिमेशन कोचिंग केन्द्रे अग्निप्रकोपः अभवत् येन छात्रेषु आतंकः उत्पन्नः नवोद्भवितः छात्राः किंग्स जॉर्ज चिकित्सकीय विश्वविद्यालये केजीएमयू लखनऊ इत्यत्र प्रवेशिताः च सन्ति अधिकांशः श्वासावरोधेन मृताः भारतस्य हज समित्या हज सप्तविंशत्यधिक द्विसहस्रतम वर्षस्य कृते तीर्थयात्रिभ्यः

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: बारह वर्ष के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों तथा हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन पेरांगे से खेलेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, Prime Minister said the country's achievements over the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
1: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गया।

خواهم کشور. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्रपति का सिद्धांत पूरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक किए जा रहे 4 जहाज हरमू जलडंगू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों के लिए बढ़े।

0: की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस में होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी। हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही सारा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म भूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल है। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता में मूर्ति, गायिका अनिता याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किया गया यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। स्वामी शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान

0: कल विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोवा चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे चार भारतीय मालवाहक जहाज हॉर्मुज जलबंदी मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लफन क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक

0: लोग स्वयं पार करने की अनुमति नहीं होगी और जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ ही आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन केनाजे से खेलेंगे। किदम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओफू का सामना करेंगे। वही महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल है। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगे। महिला डबल्स में ट्रेसा जॉली और भारतीय गोपी चंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8 बजे से जॉर्डन और

0: 2-0 से आया दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीपों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ ही मनोज
1: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है।

रिपोर्ट में घंटे चली वार्ता, बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई। जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमरीका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। यह शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। मनमोहन ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए एसआईटी गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से

0: do be good. भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर बन गए हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी दो तीन दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
1: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognize India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said, initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of khadi and support for local products succeeded because citizens embrace the spirit of nation building.
0: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय हर कदम हर प्रयास उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूँ।
1: मिस्टर मोदी साहब, nearly 25 crore people have moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.
0: 25 crore log garibi se bahar nikle hain, new middle class mein aaye hain, to iska fayda keval un parivaron par nahi rehta balki middle class ka bhi isme fayda hota hai kyunki ye naya consumer hai, ye economy ko drive karta hai, usse ultimately middle class ke liye अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
1: President Draupadi Murmu will present the Padma Awards during the second Civil Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. A report.
2: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Bhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Bhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are among the highest civilian awards of the country. Tennis legend Vijay Amrit Raj, actor Mamuti, playback singer Elton Yagnik and cricketer Rohit Sharma are among 65 prominent personalities who will receive the Padma Awards from the President. Today, executed in 1954, these awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and creative industry. Soumya Sharan, Akashwani News, Delhi.
1: News Services Division of Akashwani is broadcasting special programs as part of our series, People's Padma on Akashwani. Through these episodes, we bring insights into the lives and contributions of Padma awardees.

को कक्षाएं स्टाफ फरमाने हुक्म जारी करायो। शिक्षा विभाग द्वारा आरटीई हेठळ प्रवेश माटेनो चौथो राउंड जाहेर करवामां आव्यो। 55 बाळकने प्रवेशनी जाहेर मेसेज द्वारा वालीने करवामां आवी। અને હવે પછીના સમાચાર 9:30 મિનિટે।

श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धर्म परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मणिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन भाई और मोतिन भाई मणिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल।

झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओ, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र रहस्यमय और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना? लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो ये सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओ, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगुन, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओ, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछे कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, यह कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीमबेटका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओ, इस नाम के पीछे बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे। भीमबेटका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो ये श्रोताओ, अब जानते हैं कि भीमबेटका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीमबेटका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओ, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहाँ के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन उसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वागनकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो ये जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वागनकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वागनकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओ, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वागनकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थी। वे उन्हें अपने फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहाँ बहुत सारे शैल चित्र इन पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झलकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वागनकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीमबेटका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। ताइए श्रोता, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओ, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओ, जहाँ संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों के दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीमबेटका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओ, भीमबेटका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। 8800-4405-59 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieat.nic.in है हमारे ईमेल का पता।

0: पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो ये सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की ध्वनि बसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री बसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यता को किसने पाला पोसा है, किसने संभाली है हमारी जीवन? माँ की गोद में और माँ की आज्ञा में हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन बनाया। यही तो है नदी जिसने हमारी सभ्यता को

खाबें मनुष्य के साथ रही है, इसकी हर हंसी हर आंसू में वो हम सफर रहे हैं, मनुष्य के हर सफर में कभी तो हर सभ्यता में नदी को

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही है। 1972 में चिट्टो आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा दौरा देवी थी। इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
1: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली है। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाते हैं वे एक दूसरे को।
0: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: figuraca en Oklahoma. Sabe que no puedo salvar. Te cruz, Sean que se me. Siempre la gran carácter que. Te presenté carpachi. Tu carca nadara. Vente a ver la guata.
1: Sorry, no. उसके घर में एक गड्ढा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

0: इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती वो विधवा हो गई। रात्रि धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में यह आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती थी। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई।

0: सुनते नहीं, उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
1: ये तो थी कहानी बसंती की। बसंती का आखिर क्या नाता है कुर्सी से, है ना? बहुत गहरा नाता है। इस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। अगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई

0: के पिसाने जाती हुई मैं बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी। उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे

बेटी बसंती उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को

0: SMP Gabriela. Ini Ibu Kandi. Ahi, Boyi Hita. Ter, Ji Abis Kiskiti. Ini Sempani, Kami Menjaga. Usi, Apni Hit Chavi Dikhaegi. Tak tak, Uski Aankhon Se, ऐसे उछले कभी बंद हो चुके थे जब चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपने जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल साल थे वो पोसे के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी इसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते रहे। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही। कोसी भी अपनी जलदानों से लोगों को हरा भरा करती रही।

लेकिन लोगों की नादानी से कुर्सी की रस धाराएं तेजी से सूख रही थी। एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कुर्सी पर पहरा लगाया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।

समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।

सभी मरते हैं, लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहाँ सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव के रुख कर रहे हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासी घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला।

तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गई कि सब एकसार गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही है। बसंती दीदी ने उन्हें पकड़ा

0: क्या तुम सब ये साल गाँव के हो?
1: हाँ, हम सब ये साल गाँव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
0: नहीं, जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो अच्छी लकड़ियाँ मत काटना।
2: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो?
1: अरे हम तो तुम्हारी बातें सुना।
0: मेरे लिए नहीं, अपनी कुर्सी के पांव बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
1: तुम्हारी बात से कुर्सी के प्राण का क्या
2: रिश्ता?
1: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
2: और क्या?
1: आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
0: मामा, मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसे के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गाँव का कोई आदमी कोसे के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसे को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव गांव घूम रही हूँ।
1: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
0: मामा, इसका जवाब मेरे पास है।
1: मेरे पास?
0: हाँ, मेरे पास। मामा, तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है?
1: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांज के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ है?
0: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
1: घटेगा? अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई। खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
0: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
1: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
0: अरे

फायदा हो गया और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासी घाटी के अखरी बिजुना भेड़िया दरोड़ा सैल खेड़ा कोटा कैटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन।

0: शुरू में तो पुरुषों ने हरिहर मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई। तो वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा कुनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, इसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था। और वहाँ के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंत बहन, प्रभुओं के संकल्प की ध्वनि जुझारू महिलाओं ने साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं बसंती बहन। अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की ध्वनि बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम के तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: स्वतंत्र हमारा जब प्रायोजित कार्यक्रम सामने आया था उमंग कार्यक्रम में प्रायोजक था NCERT। हमें समाचार पास है
2: आकाशवाणी भुज प्रस्तुत अत्यान्य मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सायं राष्ट्रपति भवन में बीजा नागरिक सम्मान समारोह दरमियान 65 पद्म पुरस्कारों एनायत करते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहूं भारत झड़पती विकसता विश्वसनीय वैश्विक शक्ति बनवा पाचा राष्ट्र प्रथम सिद्धांत प्रगत में रहा है। भारत चार माइलमार्क चाहे होर्मुज स्ट्रेट ने सफलतापूर्वक पार करू। अमेरिका ईरान ने 60 दिवस सुधी तेल बेचाने छूट आपी। दोहा भारतीय दूतावास से रविवार रात्र रॉयल सैफन घटना में मार भारतीय नागरिकों ने मौत की पुष्टि करी। लखनऊ में आग दुर्घटना में पुलिस ने 6 व्यक्तियों सामने केस नोधी 4 की धरपकड़ करी। राज्य स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम अंतर्गत 5,200 अरजदारों ने रजूआतों ने संबंधित विभाग ने कार्यवाही मेटे मोकलाई। वनगर थी मुख्यमंत्री निवास थे आज से राज्य में 24वां सारा प्रवासोत्सव कन्या कल्याणी महोत्सव आरंभ थे। दरियाकांठे मरीन टास्क फोर्स में मेगा कमांड ऑपरेशन असल्ट बोट साथ सघन पेट्रोलिंग। गांधीनगर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने वर्ष 2018-19 में स्कॉलरशिप कॉन्वेंट में पुणे में एक आरोपी ने धरपकड़ करी। राज्य में छूटा छवाया विस्तारों में वरसाद में येलो एलर्ट ने आगाही वे 51 तालुकों में वरसाद। हॉकी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज FIH प्रो लीग मैच में हरित पाकिस्तान समय टकरा से। बैडमिंटन में US ओपन सुपर टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन सहित अनेक खिलाड़ी भारत में प्रतिनिधित्व करते। हम पशी मुख्य समाचार आप 5:10 सक्षम।

0: مجھے شراب پینے شد سب میں جب جیری ہوں
1: धर्मपुर के सारा पुरुष शिव प्रवेश द्वार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रेरित सारा प्रवेश उत्सव में बहुत कम निर्धार साथ आगे बढ़ी रहा है। लाभ मिले मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल 24 और 25 जून समग्र राज्य में योजना से सारा प्रवेश उत्सव।

प्रणाली अंतर्गत हमने जाप नारायण स्वामी नो स्वर सांभळी रह्या हता। 223 मीटर से लेकर 1314 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी भूज केंद्र छे। अत्यारे 10 वाग्या छे। प्रस्तुत छे हिंदी फिल्म संगीत नो कार्यक्रम मनोरंजन। आजे अभिनेता राज बब्बर ने जन्मदिवस निमित्त प्रस्तुत छे तेना पर आधारित केटलाक गीतो। प्रथम गीत ने स्वर आप्या छे जगजीत सिंह फिल्म प्रेम गीत।

0: है मारी स्कूल। टिकिश तो खुश चूहो। आओ जल्दी, मारी शारा माँ थवानो छे शारा प्रवेश उत्सव। छे ने अच्छा जेवी वाँ।
1: पर ये सारा प्रवेश नो प्रवेश द्वारा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रायोजित सारा प्रवेश उत्सव मक्कम निर्धार साथ आगे बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल 24 और

0: ये रही है हमारी स्कूल, इतनी तो खुश छू। आओ जल्दी, हमारी शाला में थवानो छे शाला प्रवेश उत्सव छे ने तज्जब जेवी हाँ।
1: देवपुर ये सारा भविष्य नो प्रवेश द्वार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रेरित शाला प्रवेश उत्सव में लक्कन निर्धार साथ आगे वधेरी रहा से माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल। 23, 24 और 25 जून समग्र राज्य में योजना से शाला प्रवेश उत्सव, तुम्हें पर तुम्हारे बालक ने नाम ले दो ये भगवानी तैयार हो।
2: किशोर कुमार ने सांभरी फिल्म अंगारे।

जमा देखाओ तो तात्कालिक 1093 पर कॉल करी मरीन पुलिस ने जान कर दी। आपकी सजगता अने तकेदारी आपे दरियाई सुरक्षा की खातरी। गुजरात मरीन पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: हेलो।
1: हाँ जी,
0: बस
1: बस मैं यहाँ कौन बोला शो क्या तुम बोला शो
0: भाई वाकई
1: वाकई नहीं थी बरकत भाई शो कर रहे आप भाई मैं शो कर रहे शो
0: भाई
1: मुहूर्त के जीवन में आनंद मिला शो रेडियो सांभरो शो એમાં ખાસ કયા કાર્યક્રમો સાંભળો છો
0: આજે
1: તો સાંભળ્યું છે તો આવો સંભળાવી તમને તમારી પસંદનું આ ગીત

स्पॉन्सरिंग विविध धरती पर अपनी पसंद की गीत सुनने के लिए कॉल कीजिए हमारे फोन इन प्रोग्राम हेलो हेलो में। अहमदाबाद का कोड है 079 और हमारा नंबर है 2754-2672 और 2754-1942। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2754-2672 और 2754-1942। हर सोमवार सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच बस अपना फोन उठाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। आप कहेंगे, हम सुनेंगे और सुनेगा पूरा गुजरात।

0: चला दो, गाना चला दो।
1: हेलो हेलो,
2: अरुण भाव दक्षिण शहर मणि नगर के बोल।
1: हाँ जी बोलो, आप शो करो सर।
2: हमारा ऐसा बिजनेस है,
1: हाँ समझ गए, प्रैक्टिकल मैटर जो उपयोग में आ रहे
2: जी
1: बिल्कुल। हाँ जी बोलो, कौन सा?

0: हेलो हेलो,
1: अरे
0: नमस्कार। कौन बोले छो?
1: नमस्कार जी, अब्दुल
0: हाँ, शू करो छो। वीडियो
1: भाई बोलूँ तो नाम रहे थे पति
0: में क्लास कहे तेरी प्रमो सांभलो छो?
1: पति
0: समाचार में भी सांभलो छो?
1: जरूर
0: तो प्यार माना, प्यार माना कहीं फेर लागे छे तमने?
1: जरूर,

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: नमस्कार कौन बोले छो
1: दुनिया में दरे की मैं वर्तला शहर जूनागढ़ के लिए छोड़ की बात करूँ छू
0: बोलो बोलो आप शू करो छो
1: मारो सिलाई में बंदर से चल रही है मेरे अलमारी साथ में जो लोग की चिप की छोड़ रही थी
0: ये आप अपने साथ काम करे छो
1: बड़ी बांध काड़ी ना कोई भी बोला चाहे जो बड़ी बांध ये लोग बढ़िया समझ रहे हैं।

आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा केंद्र प्रस्तुत है गैर फिल्मी हिंदी गीतों का कार्यक्रम।

उदासी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

सरकार है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखिए, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: Bu durum ihtimalleri Sangreşo Devleti Brasile Tindi Bölüsü açıyorum.
1: Namaskar. Arkadaş Boris Sanatçı'nın bir saat bir tanıklıkta. सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।

0: चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में निफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर रहे हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरा, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है।

श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि एलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्रयुक्त बयान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को एसआईटी का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया।

0: आकाशवाणी समाचार वार्तालाप राजेश सर्वप्रथम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत झड़पथी विकास का विश्वसनीय वैश्विक शक्ति बनवा पाचड़ राष्ट्र प्रथम सिद्धांत प्रेरक बन रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बीजा नागरिक सम्मान समारोह में 65 पद्म पुरस्कार एनायत करते। अमेरिकाए भारत में M777A2 अल्ट्रालाइट होविट्जर 230 मिलियन $230 पैकेज की जाहरात करी। मणिपुर में तपास अभियान दरमियान सुरक्षा दलों मोटी संख्या में हथियारों और दारूगोलों जप्त करे। फीफा फूटबॉल वर्ल्ड कप में अल्जीरियाए जॉर्डन ने और नॉर्वे सेनेगल ने हराया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत झड़पथी विकसता विश्वसनीय वैश्विक शक्ति बनवा पाचड़ राष्ट्र प्रथम सिद्धांत प्रेरक बन रहा है। नवी दिल्ली में एक खानगी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट में संबोधता प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 समिट में विश्व नेताओं भारत में राष्ट्रीय हितों ने प्रथम रखा देश की प्रतिबद्धता ने स्वीकार।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: तमिल कहूं कि ताजेतर वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी में बाहर आया है, जेना कारण एक मोटो नवो मध्यम वर्ग उभरी आयो है। आर्थिक प्रवृत्ति ने वेग मिलो तेरे भार मूको कि गरीब और मध्यम वर्ग ने सशक्त बनाव ए सरकार की मुख्य प्राथमिकता रही है, जेमा पोषणक्षम आवास की पहल, कर सुधारा, आरोग्य संभाल योजनाओं, सुधारेली शहरी मालगत सुविधाओं उल्लेख कर।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस से उस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है। इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक पड़कारों छता भारत अभूतपूर्व अपना समयगाड़ा में प्रवेशी रहा है। तमें देश युवाओं, उद्योग साहसिकों, नवीनताओं और स्टार्टअप्स ने उभरती तकों लाभ लेवा और राष्ट्रीय विकास में योगदान अपना हकल करी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सांजे राष्ट्रपति भवन में बीजा नागरिक सम्मान समारोह दरमियान 65 पद्म पुरस्कार एनायत करते, जेमा 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री नो समावेश थाय छे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 121 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता में मोती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल आज नवा सुरक्षा जोखमों और पड़कारों से वाकिफ रहने जरूरत पर भार मूको। नवी दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में बोलता श्री डोभाल ने कहा कि बिन परंपरागत जोखमों राष्ट्रीय सरहद पार कर गया है। तमने नवीन विक्षेपकारक तकनीकों, आतंकवाद में वधु छुपायेला प्रकारों, साइबर जोखमों वधु ने वधु डिजिटाइज थे रहा होवा पर भार मूको हतो। 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक दरमियान चर्चा बिन परंपरागत सुरक्षा पड़कारों पर केन्द्रित रहने जुड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयले कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार करार भारतीय खेडूतों, मछीमारों,

0: अल्जीरिया, जॉर्डन अने नॉर्वे सेनेगल ने हराई दी। आकाशवाणी पर समाचार पूरा थया हवे पछी आप 2:30 प्रादेशिक समाचार सांभळी शकशो।
1: यह है आकाशवाणी का अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और भूज केंद्र का।

Recordi, senyor i senyora, soga, swagat. Dosto, aaj janm din hai Raj Babbar ka. Hindi cinema aur rangmanch ki duniya mein Raj Babbar ne apni sashakt abhinay kshamta se ek alag pehchan banayi hai. Rashtriya Natya Vidyalaya yani NST se abhinay ki shiksha prapt karne ke baad उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और शीघ्र ही दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गए।

دوستی آج رات भर के जन्मदिन पर हम उनके स्वस्थ सुखमय और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा और उनकी फिल्मों आने वाली पीढ़ियों का मनोरंजन भी करती रहेगी।

0: आज भारतीय कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और भोज केंद्रों से किया गया है।
1: बजकर 15 मिनट पर सुनेंगे दोपहर समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, पूर्व जगत प्रवृत्ति के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची और लंदन में एफएलएच हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 121 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म भूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल है। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता में मोती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किया गया पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।

0: यह कार्यक्रम आज एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का और मुझे तक सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 7 साल के अंदर उनकी विचारधारा को आगे बढ़ते बढ़ते देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नफद के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने

अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीदकारों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने

राव ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा।

0: कृषि किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonline.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलमग्न युद्ध के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े बड़े खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेन और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कोरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: घटनास्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन अमन कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से अध्ययन करेगी। दूसरी ओर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावों में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अनुमानों का मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अनुमानों की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार तीसरे दिन भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्यवत सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्यवत पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और उपनगर के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल की तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक गोल के मुकाबले में अर्जेंटीना ने कदार ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा होर्मुज जलमार्ग के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: इंडोनेशिया में साझा में आप सुन रहे थे हमारे संभागीय अमर भट्ट।

बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर।

नमस्कार। आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कुछ शिक्षणों में

0: परीक्षा सीयूईटी 2026 के स्नातक पाठ्यक्रमों के दाखिलों के लिए परिणाम घोषित कर दिए हैं। प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी भी जारी है। गुजरात के राजपीपला में सत्र न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा और उनके पत्नी समेत 8 अन्य लोगों को नवंबर 2023 के एक मामले में 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में उन पर वन अधिकारियों पर हमला करने और जबरन वसूली का आरोप था। तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने बताया कि लगभग 315 जिले सामान्य से कम वर्षा से प्रभावित हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अभी भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौते होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने हॉर्मुज जलबंधु मध्य को पार कर लिया है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय पश्चिम एशिया में जुड़े सभी घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सिसेक बंटोक और उद्योग तथा खनन मंत्री बोंगो दामबिनयाम के साथ मंगोल रिफाइनरी परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट पर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। अमरीका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 7 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। एफआईएच हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने जॉर्डन पर 2-1 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: આકાશવાણીનું આ અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર આપ સાંભળી રહ્યા છો। પ્રસ્તુત છે અમારા આજે હવે પછી રજૂ થનારા કાર્યક્રમોની વિગતો। 5 વાગ્યાના 10 મિનિટે ફિલ્મ સંગીતનો કાર્યક્રમ ગુલમહોર, લોકસંગીતનો સમય રહેશે 5 વાગ્યાના 45 મિનિટે। 6 વાગ્યાના 30 મિનિટે યુવા મિત્રો માટેનો ખાસ કાર્યક્રમ યુવવાણી, ગેર ફિલ્મી ગીતોનો આનંદ આપવાની શકશો 7 વાગે। 7 વાગ્યાની 22 મિનિટે ખેડૂત મિત્રો માટે ખાસ કાર્યક્રમ ગામનો ચોરો, જેમાં ટેરેસ પર શાકભાજીની ખેતી એ વિશે માહિતી આપવામાં આવશે। 8 વાગે શાસ્ત્રીય રાગો પર આધારિત ફિલ્મ સંગીતનો કાર્યક્રમ સુર માધુરી। 8 વાગ્યાની 30 મિનિટે ગુજરાતી ગેર ફિલ્મી ગીતો, ફિલ્મ સંગીત સાંભળી શકશો 9 વાગ્યાની 15 મિનિટે। 9 વાગ્યાની 30 મિનિટે આરએનએ દ્વારા ખાસ પ્રસ્તુતિ, ગુજરાતી ગીતોનો આનંદ માણી શકશો 10 વાગે। તેમજ 10 વાગ્યાની 30 મિનિટે હિન્દી ફિલ્મ સંગીત। આ હતી માહિતી અમારા હવે પછી રજૂ થનારા કાર્યક્રમોની। હવે જોઈએ પોલીસ જાહેરાત।

0: सितंबर तो अत्यारे दरिया जाए छे।
1: अरे ना भाई ना, मने खबर छे के मानसून ब्रेक दरमियान दरिया न जवाय अने माछीमारी न कराय, समझ्यो?
0: ए बराबर, मानसून ब्रेक दरमियान दरियो खेडवो ए गंभीर अने सजापात्र गुनो छे। अने हा, जो कोई अजाणी अथवा शंकास्पद व्यक्ति के बोट दरिया में देखाय तो तात्कालिक 1093 पर कॉल करी मरीन पुलिस ने जाण करवी। आपनी सजागता अने तकेदारी आपे दरियाई सुरक्षा नी खातरी। गुजरात मरीन पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हमने जब भी सुन रही फिल्म बातों बातों में गीत शब्द होता अमित खन्ना ना, संगीत तो राजेश रोशन ना। श्रोता मित्रों, आज अपने संगीतकार राजेश रोशन ने स्वरबद्ध करेला कितना गीतों गाईशु। हमें संभव फिल्म देश परदेश संगीत अमित खन्ना ने शब्दों छे, स्वर छे किशोर कुमार ना।

0: द्वारा स्वागत खेलो भाई दरियो खेल बचाओ एक महिला हवामान विभाग ने आ रही अगर दरिया में स्थिति में हमेशा ध्यान रखो फिशरीज विभाग द्वारा हवामान खराब हवानी चेतावनी और तो दरिये जवानों दाल उन्हें जो दरिया में हो तो तुरंत पाछा आ जाओ आ चेतावनी की अवगणना ना किस्सा में बोट डूबवाना बनाया नोधायल अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति के बोट माछीमारी करते देखा है तो तुरंत 1093 पर कॉल करी मरीन पुलिस ने जान कर हवामान ने समझी बनो सुरक्षित के बना आपकी सजगता आने तक जारी आपने दरिया की सुरक्षा की खातरी गुजरात मरीन पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित
1: શ્રોતા મિત્રો કાર્યક્રમ છે ગોળવાર અને આપ સાંભળી રહ્યા છો આકાશવાણીનું અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર હવે સાંભળીએ દૂસરા આદમી ફિલ્મનું ગીત લતા મંગેશકર અને કિશોર કુમારના સ્વરમાં શબ્દ રચના છે નજરો સુલતાનપુરી અને સંગીતકાર રાજેશ રોશન

कार्यक्रम में हमें संभालिए फिल्म काला पत्थर में गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफीना शर्मा शब्द रचना साहिर लुधियानवी ने संगीत राजेश रोशन।

0: देखो, नच जा आवर, पिछली गाल अच्छी में। नमस्कार, कच्छ जा वावर जो हैं अंत में आंजो स्वागत आए, जिनमें असा आना करे खड़ी हो आई हूँ, आखे अठवाड़िये जा महत्व जा समाचार। अज के अंक साथे अमैया अशरफ मठवाणी, मनुदेन आई परेश मारू।
1: नमस्कार श्रोता मित्रों,
0: परेश पाक कच्छ जा करो वावरी, अज के अंक में करो खास आए, पहले इन विषय श्रोताएं के गाल करो।
2: राज्य जी साथे कच्छ में पण आज थी शाला प्रवेशोत्सव अने कन्या केळवणी महोत्सव जो थयो प्रारंभ। पूर्व अग्निविरह के गुजरात सरकार जो विविध विभाग में वर्ग त्रेजी भर्ती में 20% मिल भी अनामत। गुजरात सरकार द्वारा सुगम डिजिटल गुजरात पहल शुरू करने आवी। राशन कार्ड जातीय दाखलो बनेला करे अने घरे वेने ज ऑनलाइन फॉर्म भरे सकागा। कच्छ जा वी मध्यम सिंचाई जे डेम ने 27% पानी बचो, मुख्य 5 डेम हेवर साव खाली। कला वारसो ट्रस्ट संस्था तरफ थी कच्छ जे कलाकार के कला वारसो भूषण एवॉर्ड जाहिर करने आयो। राज्य जी साथे कच्छ में आज थी 3 दिवसों भी ग्राम्य अने शहरी विस्तार में शाला प्रवेशोत्सव अने कन्या केळवणी महोत्सव जो प्रारंभ थयो है। जिला कलेक्टर अनिल राणावसिया अने जिला विकास अधिकारी उत्सव गौतम जे मार्गदर्शन हेठळ शिक्षण तंत्र तरफ थी महोत्सव योजाई रह्यो है। कच्छ में राज्य मंत्री त्रिकमभाई छांगा, 17 राज्य कक्षा जा अधिकारी सांसद विनोद चावड़ा, जिला पंचायत प्रमुख प्रभाबेन होड, धारासभ्य अने पदाधिकारी सहित कुल 109 जेटले रूटे मथे विविध शालाए में बाळके के बालवाटिका धोरण 1, 6, 9 अने 11 में प्रवेश करेने अचिंदो। इन प्रसंग पर शालाए जे नवे भवन जो लोकार्पण पण करेने अचिंदो। इन वारे प्रवेशोत्सव जो मुख्य उद्देश्य शाला छड़ी दिनो आयो एरा ड्रॉप आउट बाळके के फेरी थी स्कूल में प्रवेश कराई जो आए। इन वारे शाला प्रवेशोत्सव जी विशेषता जी गाल करी तो समग्र संचालन शाला जा विद्यार्थी संभाळीना। शाला प्रवेशोत्सव अने कन्या केळवणी महोत्सव अंतर्गत स्कूल में बाळ के जो वक्तव्य तेजस्वी तारने जो सम्मान SMCG बैठक वृक्षारोपण जगह कार्यक्रम योजाता। जिला शिक्षण कचेरी जे आपने अनुसार बाल वाटिका में 34,500, धोरण 1 में 31,500, धोरण 9 में 39,163 विद्यार्थियों के प्रवेश देने अचिंदो। गुजरातचा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पूर्व अग्निविरेला करे हिकडी महत्वपूर्ण जाहिरात केलीयो। राज्य सरकार जे विविध विभाग में वर्ग त्रय संवर्ग जी सीधी भर्ती में अने पूर्व अग्निविरे के 20% अनामत देने अचिंदी अने हिन उपरांत इन्हीं के शारीरिक क्षमता कसोटी मेजा पर मुक्ति देने अचिंदी। ऊपरी वय मर्यादा में 3 वर्ष जी छूट छाट पण देने अचिंदी। अग्निविरे स्कीम जी पहली बेंच सभ्य के वय मर्यादा में 5 वर्ष जी छूट छाट दे जो निर्णय गिने में आयो है। इन निर्णय जो लाभ हथियार पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस कॉन्स्टेबल, SRP प्लाटून कमांडर, जेल विभाग जा जेल ग्रुप बो अने जेल सिपाही तथा वन विभाग जा वन रक्षक अने वनपाल वर्ग त्रेजी सीधी भर्ती में लाभ मिल दो। गुजरात सरकार तरफ थी सुगम डिजिटल गुजरात पहल शुरू करेंगे आवी है। आवक चो दाखलो, जातीय दाखलो, राशन कार्ड जेवी रोजभरोज जी 20 महत्व जी सरकारी सेवाओं डिजिटल गुजरात पोर्टल पे ऑनलाइन मिल दियो। 16 विशेष अहवाल।
3: राज्य सरकार सुगम डिजिटल गुजरात पहल अन्वय नागरिकों की रोजमर्रा की जरूरत के स्पर्श थी 5 विविध विभाग की टॉप 20 हाई वॉल्यूम सेवाएं के प्राथमिकता के द्वारा डिजिटल गुजरात .gov.in पोर्टल के ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। इन उपलब्ध सेवाएं में आवक जो दाखिलो, सामाजिक और शैक्षणिक रूप ऐसी पिछड़ा वर्ग जो प्रमाण पत्र, नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप ऐसी नबड़ा वर्ग जो प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रेशन कार्ड की सेवा, जन्ने और रेशन कार्ड फॉर्म उमेरे जो कमी करे जो सुधारे जो अने अलग रेशन कार्ड बना जो अन्य सेवाएं में सौगंदनामू अने नकल मेरवे जी विनंती जो पण समावेश थे तो नागरिक जी सुविधा ने वहीवट में सचोटता खरी ले इस सेवाएं में आधार प्रमाणीकरण जी प्रक्रिया अमल में रखी में आवी है। कई बार आधार सफलता पूर्वक वेरीफाई थी वने पाछळ अरजदार के ओळख के रहेठाण जी पुरावे ले घरे घरे कोई दस्तावेज देने की जरूर नहीं पाए, जनती समय जी बचत थी गई। लिंकिंग की योजना में किसी डुप्लीकेशन अटकाई सकान जो खाली पात्रता धरावता सकल लाभार्थियों के लाभ मिल दो इस સુનિશ્ચિત થતો પ્રમાણીકરણને ઓટીપી અથવા બાયોમેટ્રિક પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવાનો સુરક્ષા જે હેતુ સિસ્ટમને કરવા પર સંપૂર્ણ આધાર નંબર જમીન લાયા ખાલી છેલ્લા ચાર આંકડા જ મેરે સગાના જો કોઈ ટેકનિકલ કારણસર આધાર પ્રમાણીકરણ નિષ્ફળ થયું ને અથવા કોઈ નાગરિક વડે આધાર કાર્ડ ન હોય તો વૈકલ્પિક ઓળખ પુરાવેથી ખાલી કરીને સેવા પૂરી પાડે જે સ્પષ્ટ જોગવાઈ કરેલી આવી જાય પોર્ટલ થી મને આપણે રજીસ્ટર બટન પર ક્લિક કરીને મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ આઈડી થી અકાઉન્ટ બનાવવાનું ખબર આવી સેવા જે વિનંતી પર ક્લિક કરીને જરૂરી સેવા પસંદ કરી જીવંતી જરૂરી દસ્તાવેજ અપલોડ કરીને ડિજિલોકર જો સીધો ઉપયોગ કરી શકાતો અરજી સબમિટ થઈ ગયા પાછળ ઓનલાઈન પેમેન્ટ ગેટવે થી નિર્ધારિત ફી જે ચૂકવણી કરે જીવંતી અરજદાર પંજી અરજી ની સ્થિતિ પોર્ટલ પર લોગ ઇન કરીને જાણી શકે તો અને સેવા પૂરી થઈ બને પાછળ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન ડાઉનલોડ પણ કરી શકતો વિશ્વસનીયતા અને ગતિશીલતા ખાણી છે એ પ્રયાસોથી ડિજિટલ ઇન્ડિયા અને વિકસિત ગુજરાતની સંપૃક્તિ વધુ જોર લે તો વધુ માહિતીને નાગરિક ટોલફ્રી નંબર 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 સમાચાર ભુજ.

0: हिमारे वरसाद न रचिंदा कच्छ में पाला अने डेमे में जल संग्रह की स्थिति चिंताजनक नेरेला मिले थी। सिंचाई विभाग के आंकड़े अनुसार राज्य में सौथी ओछो जल संग्रह हेवर कच्छ जोन में नेरेला मिले तो गत वरे करता हिमारे 2% ओछो आए। कच्छ जा वी मध्यम सिंचाई के डेमे में खाली 27% पानी फचो आए। इन मुजब पंच मुख्य डेम कालिया रुद्रमाता कासवती निरोना अने गजोर साव तलिया जाकर थी गया है। इन सिवाय जे डेमे में 3% जितलो ज पानी बचेलो है। नदी सिंचाई जे डेमे की स्थिति पर साव खराब है। जिला पंचायत हस्तक था 170 में जा 119 डेमे जा तरिया दसा जाता इन डेमे में कुल संग्रह क्षमता में जा खाली 13% पानी जो जत्थो बचो है। लोकवाद्य अने लोक कलाकार जे जतन अने संवर्धन ना कार्यक्रम करी दल कलावारसो ट्रस्ट संस्था तरफ थी दर वरे कच्छ जे लोक कलाकार के कलावारसो भूषण एवॉर्ड जाहिर करी ने अचे तो शनिवार 2026 जो एवॉर्ड जाहिर करी ने आयो है। जेमे बेंजो वादक रमणीक परमार, सूफी गायक रमजान लाखाकेर, संतार वादक गंगा सूरा भगत, लोकगीत कलाकार नवलबेन अजू बारोट, जोड़िया पावा कलाकार इस्माइल जुमा जत, शरणाई वादक जुमा जूसफ सुमार, मोहम्मद वादक अब्दुल सुलेमान लंगा, लग्न गीत गायक केसरबाई फक्कू फायरी, गुरुमुख वाणिज्य गायक रामा संग्राम कोहली और रामसागर जा कलाकार छगन वर्सी भाई के एवॉर्ड जाहिर करने आया है। इन एवॉर्ड विजेता के सम्मान में जो कार्यक्रम आगामी 5 जुलाई जो भोजे स्मृति वन खाते करने अचीगो जन कलाकार के रोकड़ मानदान प्रमाण पत्र स्मृति चिन्ह एनायत करने अचीगा। मित्रों हाने पा कच्छ जे अन्य महत्व जे समाचार मथे एकड़ी नजर विजू रजू करिए पा कल्पना शाह।
1: गांधीधाम अने आदिपुर में लायंस क्लब ऑफ गांधीधाम द्वारा ड्रग जे दूषण सामे जागृति कार्यक्रम योजना आयो। मलिया थी सामखियाड़ी सुधी जो रेलवे ट्रैक कवच 4.0 थी सुरक्षित बंदो। जिले में आगामी 27 जून सुधी हथियारबंदी जाहिर करने आई है। जिले जे पशुधन के लंपी रोग जारी अत्यंत गंभीर अने चेपी बीमारी थी सुरक्षित करेला पशुपालन विभाग द्वारा रसीकरण अभियान हाथ धरे में आयो। ग्राम स्वराज संघ नीलपर द्वारा बालासर गाम में आरोग्य अने पोषण संवाद कार्यक्रम जो आयोजन करे में आयो। योग दिवस निमित्ते कच्छ में जिला कक्षा जे कार्यक्रम उपरांत तालुका कक्षा अने महानगर पालिका नगर पालिका कक्षा जा अने विविध शैक्षणिक सामाजिक संस्थाएं द्वारा योग जे कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मारू में भाग घना। नखत्राणा नगर पालिका जी टेली सामान्य सभा में विविध समितियां जी रचना करे में आवी। लखपत जे छेवाड़े जे विस्तार में गुणवत्ता सभर आरोग्य सुविधाओं पजायला अद्यतन मोबाइल मेडिकल यूनिट वैन जो लोकार्पण करे में आयो। जिले में जर्सी गायें के पितरीजा ताव फेलेरियोसिस सामे रक्षण बनेला मुफत रसीकरण अभियान जो प्रारंभ मांडवी तालुके जे बाग गाम थी करे में आयो।

0: मजबूतियां उज्जवल भविष्य नितिन गुजरात अभियान साथ ही शिक्षण में बदलना आयानी साक्षरता जनसंख्या ज्ञान द्वारा गरीब भारत में सक्षम बनाने संकल्प निपुण मानक निपुण भारत वाचन लेखन अनुदान में आवश्यक कुशलता साथ बालकों में सर्वांगीण विकास तरफ एक महत्वपूर्ण पहलू निपुण शाला निपुण गुजरात के साकार थे रही निपुण भारत के स्वप्न विकसित गुजरात विकसित भारत शिक्षण विभाग गुजरात सरकार विकसित भारत 2047 में संकल्प साथ है गुजरात शिक्षण में गुणवत्ता में नई दिशा तरफ आगे बढ़ रही है निपुण गुजरात अभियान नवा राज्य अभ्यासक्रम एंड स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क SQAAF द्वारा शालाओं में गुणवत्ता युक्त शिक्षण में वृद्धि सशक्त बना फरमा रही है गुणोत्सव शिक्षण में श्रेष्ठता में नई ओरख बनी रही है विकसित गुजरात में आया मजबूत बनावतों गुणवत्ता सदा शिक्षण गुणवत्ता युक्त शिक्षण उज्जवल भविष्य शिक्षण विभाग गुजरात सरकार
1: હવે સાંભળીએ

0: नवी आशाओ नवा सपनाओ नवा युग में शिक्षण में नवी दिशा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधारित स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क SCF साथ गुजरात शिक्षण में नवी दिशा तरफ आगे बढ़ी रही है। बालकों ने सर्वांगीण विकास में समर्पित आ अभ्यासक्रम ज्ञान कौशल्य मूल्य और सृजनात्मकता ने समन्वय साधे है। उत्तम शिक्षण उज्जवल गुजरात न ध्येय साथ स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क शिक्षण विभाग गुजरात सरकार नो एक मजबूत पैकेज है। शिक्षा विभाग गुजरात सरकार मजबूत पायो उज्जवल भविष्य नकल गुजरात अभियान साथ शिक्षण में नवी उड़ान पाया ने साक्षरता जनसंख्या ज्ञान द्वारा दरेक बालक ने सक्षम बनाने संकल्प नकल बालक नकल भारत वाचन लेखन और गायन में आवश्यक कुशलताओं साथ बालकों ने सर्वांगी विकास तरफ एक महत्वपूर्ण पड़ो नकल शाला नकल गुजरात की साकार थे रही है। नकल भारत की स्थापना विकसित गुजरात विकसित भारत शिक्षा विभाग गुजरात सरकार।
1: લોક સંગીત કાર્યક્રમમાં હવે સાંભળીએ મનુભાઈ બારોટના સ્વરમાં દુલિયા પાયા કાગની રચના

0: नमस्ते, मैं आकाशवाणी है ना, मैंने कहा पिंकी बलानी खड़ा खबरों को बोला सरों का पैरी खास खास खबरों। राष्ट्रपति गोकर्णा द्रौपदी मुर्मू अलीशान राष्ट्रपति भवन में मुंतजिम वह नागरिक सम्मान दर्शनी में पद्म पुरस्कार अटा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिक बाबा बाबा जी सोच साहब अमरवारंग उमरानी में नागरिकन के मार्कोज में रखने जो अर्स गायो। गृह मंत्री अमित शाह जवाहर का कलम 370 के मनसूख करने में मोदी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सपनो साकार थो आहे। आश्रम प्लान एजेंसी एनडीए अब कॉमन यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान CUET 2026 जे अंडर ग्रेजुएट दाखिला जा नतीजा पदरा का अहम। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग जे शुरुआती मैच में अब भारत जो मुकाबलो पाकिस्तान से थो। हाँ खबरों तफसीलवार बदला। राष्ट्रपति मातरमा द्रौपदी मुर्मू अधिशान राष्ट्रपति भवन में मुंतजिम वह नागरिक सम्मान दर्शन में पद्म पुरस्कार अटा गया। निदान व पद्म व भूषण सप्त पद्म भूषण और छावे व पद्मश्री समेत कुल 65 पद्म सम्मान इनाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिक गौरव भवा जी सोच साधव अमरदारंग हुक्मरानी में नागरिकों के मरकोज में रखा जो अर्ज का अब नई दिल्ली में मुख्तलिफ वजरातन और महकमन में असिस्टेंट सेक्रेटरी तौर मुकर्रर IAS 2024 बैच के 183 तरबत अफसर से मिलेंगे। श्री मोदी नौजवान सिविल सेवकों के 2027 तरक्की याफ्त भारत के मकसद भारत की यात्रा की अगवानी करण की अपील कई। प्रधानमंत्री नौजवान सरकारी मुलाजमन के मजबूत संकल्प नवाचार और नागरिक मरकोज हुक्मरानी संदर्भ राष्ट्र निर्माण में पाने के समर्पित करें जो अर्ज कयो। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरान जैसे नेता रामर टेलिंगन और देशभक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के श्रद्धांजलि अर्पण गयी। गृह मंत्री अमित शाह जवाहर के कलम 370 के मनसूख करने से मोदी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सपनों साकार हो रहे। श्री शाह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पुण्यतिथि के श्रद्धांजलि अर्पण करे उनके देश जो महान नेताओं में अपने समाओ उन्हें चाहिए डॉक्टर मुखर्जी जो योगदान देश की एकता और सहमत के बरकरार रखने में अहम किरदार निभाओ। श्री शाह चाहत
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का और मूल से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 7 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते अब देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में एसएचजी नीलामी पोर्टल जो आगाज हमें श्री शाह चाहे तो 18 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खास अहमियत रखे तो छो जो एनआईडी श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय एकता है पंजी हयाती कुर्बान कई हुई वीरांगे जी द्वारा की याद करें उन्हें चाहे तो ओला बंगाल के भारत जो हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो अहम बड़े किरदार आए। गृह मंत्री करण प्रसिद्ध सत्ता जो अपने जिक्र कर जय जम्मू कश्मीर के खास दर्जो बनो श्री शाह चाहत
1: कश्मीर का राष्ट्र दर्ज

0: agency NPL and a common university baccalaureate program. CUET बाजार छवी जे अंडरग्रेजुएट बाकलान जा नतीजा पधरा पया आहिनि। बाकलान कानून में शामिल कयल उम्मीदवार CUET जे सरकारी पोर्टल ते पंहिंजो स्कोर रिकॉर्ड ॾिसी सघनि था। विदेश वज़ीर अॼु ॼाणायो आहे त भारतीय झंडे वारा ॾह जहाज़ अञा ताईं फ़ारस जी खाड़ी एराज़ी में मौजूद आहिनि। वज़ीर जे तर्जुमान रणबीर जायसवाल नई दिल्ली में चयो त अमेरिका ऐं ईरान जे विच में समझौतो थियण खां वठी भारत ईंदड़ यारहं जहाज़ जहाज़नि हॉर्मूज़ स्ट्रेट समूंडी रस्तो पार कयो आहे। हुन चयो त हज़रत ओलह एशिया सां जुड़ियल सभिनी सिलसिलेवार वाकनि ते बारीकी सां नज़र रखी रहियो आहे। कतर में कल्ह धमाके ते श्री जायसवाल लाहिया त
1: रासलफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ इनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: कतर में अग्निमय हादसे वाकई खान मुतासर मारे गए मदद वास्ते तमिलनाडु सरकार हेल्पलाइन शुरू करा। मुख्यमंत्री श्री जोसफ विजय हादसे में हयात विने में हरिक परिवार के 2 लाख रुपए में मुआवजा देने की पधराई कई है। मंत्री चयो त राज्य सरकार टिन मुतासिर थियल शख्स ऐं माण्हुनि खे वापसि आणण लाइ हर कदम खणी रही आहे। अमेरिका ईरान मथां गैरबानी रूप सां लॻायल वॾियूं पाबंदियूं हटायूं आहिनि, जिन में ईरान मूल जे कचे तेल पेट्रोलियम ऐं पेट्रोकेमिकल पैदावार जो निर्माण विच ऐं विकरे खे ब्रांड ॾिनी वई आहे। अमेरिकी सरकार खज़ाने महकमे मुताबिक़ 60 ॾींहनि लाइ जारी कयल आम लाइसेंस 21 अगस्त ताईं क़ाइमु रहंदो। इहा कार्रवाई अमेरिका ऐं ईरान विच में आख़िरी शांती समझौते खे सलामत करण जे मक़सद सां अंतरिम समझौते जे वक़्त माद जे तहत आहे। दान ऐं चयागो में मोबाइल तौर ते थियल गैर रीतियुनि जी जांच कंदड़ टिनि मेंबरनि वारी ख़ासि टीम SITR अॼु पंहिंजी शुरूआती जांच रिपोर्ट पेश करे छॾी आहे। सूबे सरकार मोबाइल तौर ते माली गैर रीतियुनि ऐं नाले जे गैर उपयोग जी जांच लाइ हिन आला सतही पैनल खे रखियो हो। लंडन में FIH प्रो लीग जे शुरूआती मुक़ाबले में अॼु भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो सामनो पाकिस्तान सां थींदो। इहो मुक़ाबिलो भारतीय वक़्त मुताबिक़ शाम जो 7 बजे खां शुरू थींदो। विदेश मंत्री एस जयशंकर अॼु मंगोलिया जे विदेश मंत्री ऐं उद्योग पूरे खान मंत्री सां मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट जे अदावती जाइ जो दौरो कयो। आख़िर में मुख्य ख़बरूं हिकु दफ़ो ॿीहर ॿुधंदा। राष्ट्रपति द्रौपदी

0: वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर, हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: આકાશવાણી નું અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર આપ સાંભળી રહ્યા
2: છો। નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં ગુણેશ શર્મા।

राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से है। यह पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायण को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता बनूटी और पार्श्व गायिका अनिका याज्ञिक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए काम करने का आह्वान किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एल नीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बात

Agency and TNS Snatch Pathakrama mein pravesh ke liye Sanyukt Vishwavidyalay Pravesh Pariksha CUET 2026 ke Snatak Pathakram ke parinam aaj ghoshit kar diye hain. Umidwar CUET ke adhikarik portal par apna score card dekh sakte hain. Agency ke anusar is saal Pravesh Pariksha mein 11 lakh se zyada abhyarthi shamil hue. विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फॉरेस्ट के खाड़ी क्षेत्र में मौजूद है. मंत्रालय के प्रवक्ता रणबीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने हॉर्मुज जलबंदर मध्य को पार किया. इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर्स के अलावा

0: थोड़े हमारे भारतीय नौसेना के आधुनिक स्टेल्थ युद्ध पोत आईएनएस उदयगिरी और पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत आईएनएस कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के दौरान कल वियतनाम के नारोंग बंदरगाह पहुंचे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंधों तथा बढ़ते हुए समुद्री साझेदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्वकप में आज रात 9:30 बजे ग्रुप ए में पुर्तगाल का मुकाबला होगा उज्बेकिस्तान से, ग्रुप बी में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा और वही सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में कल सुबह 7:30 बजे कोलंबिया का सामना कांगो से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी भोज प्रस्तुत है आज ना मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहू भारत झड़पथी विकसता विश्वसनीय वैश्विक शक्ति बनवा पाछळ राष्ट्र प्रथम नो सिद्धांत प्रेरक बन रहू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजय नागरिक सम्मान समारोह में 65 पद्म पुरस्कार एनायत कराया। भारतीय चार मालवाहक जहाजे हॉर्मुज स्ट्रेट ने सफलतापूर्वक पार कर। राज्य द्वारा अधूरे परिवारों में बाढ़ माटे नवीन स्कूल ऑन और शाला प्रसार कर प्रगति न प्रयोगशाला में थीम साथ राज्यभर में आज थी त्रिदिवसीय शाला प्रवेशोत्सव और कन्या कारणी महोत्सव 2026 प्रारंभ कर। राज्य साथ आज कच्छ जिले में उल्लास में शाला प्रवेशोत्सव और कन्या कारणी प्रारंभ थो। उच्च और टेक्निकल शिक्षण राज्य मंत्री त्रिकमभाई चांदनी की उपस्थिति में विद्यार्थियों ने शैक्षणिक किट आप शाला प्रवेश करवायो। सोमवार खाते योजना कार्यक्रम में जिला शिक्षण अधिकारी संजय भरमे हस्ते मेक टू स्कूल अंतर्गत शाला छोड़ी गये 29 बाड़कों ने पुनः प्रवेश कर। खाड़ा स्थित विश्व ने सबसे मोटा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की सुरक्षा ने लाइन मजबूत करने भारतीय सेना और स्थानिक सुरक्षा एजेंसी द्वारा मॉक ड्रिल अंतर्गत सुरक्षा कवायद आयोजन करायु। कच्छी रेल में आकारा विश्व ने सौथी मोटा 30 GW में खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी RA पार्क में स्पीड पोस्ट और नाणकीय सेवाओं सुदृढ़ बनाने गुजरात पोस्टल सर्कल द्वारा आगामी 24 जून थी नवी पोस्ट ऑफिस शुरू कराशे। मुंबई एयरपोर्ट थी नियमित पेसेंजर फ्लाइट सेवा प्रारंभ थयो। राज्य स्वागत उन्नयन कार्यक्रम अंतर्गत 5200 अगत्यारों रजूआतों ने संबंधित विभाग ने कार्यवाही माटे मोकलवामां आवी। जिला कलेक्टर अनिल रायवासी भूज मैनेज हेल्प पर अकस्मात निवारण हेतु इंस्टॉल करवामां आवी रहेला नवा नोडल ट्रांसमीटर कामगीरी समीक्षा करी। आ साथ आज मुख्य समाचार पूरा थया।

0: ग्राम शिक्षण को अनुसंधी ज्ञान द्वारा नई प्रायोगिक शिक्षण मिले का संकल्प निपुण भारत निपुण भारत वाचन लेखन अनुदान में आवश्यक कुशलता के साथ बालकों में सर्वांग विकास तरफ एक महत्वपूर्ण पहलू निपुण शाला निपुण गुजरात के साकार थे योजना निपुण भारत में स्वप्न विकसित गुजरात विकसित भारत शिक्षण विभाग गुजरात सरकार।
1: ગેરફિલ્મી ગીતોનો કાર્યક્રમ અહીં સમાપ્ત થાય છે. પ્રસારણ આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું. થોડીક ક્ષણમાં બરાબર 7:10 મિનિટે સાંભળશો ગુજરાતીમાં સમાચાર.

0: में सूत्रों में भाग लिया। डांगरा शिविर कार्यक्रम मंत्री ईश्वर सिंह पटेल, महसूल राज्य मंत्री संजय सिंह मेहरा केदारनाथ चौकासी खाते, ओडिशा खाते भोजन पर्यावरण राज्य मंत्री प्रवीण वाड़े और नवसारी में आदिजाति विकास मंत्री नरेश पटेले विद्यार्थियों ने शाला प्रवेश कराया। भरूच जिला में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 दरमियान 685 विद्यार्थियों खानगी शालाओं छोड़ी सरकारी शालाओं में प्रवेश मेलो जेमा भरूच तालुका में 184 और अंकलेश्वर तालुका में 183 विद्यार्थियों सरकारी शाला में एडमिशन लीधु। आ उपरांत बांद्रा जंबूसर आनोर नेत्रंग हासोड जगरिया और बांद्रा तालुका में विद्यार्थियों सरकारी शाला तरफ भरा हुआ जिला प्राथमिक शिक्षण अधिकारी सचिन शाह जानकारी।
1: डिजिटल शिक्षण लाइब्रेरी की सुविधा कम्प्यूटर लैब प्रयोगशाला है स्कूल ऑफ एक्सलेंस अंतर्गत तमाम प्रकार की सुविधाओं आज तमाम सरकारी शालाओं में आपने सफलता भागरूपे भरूच जिला लगभग 685 जेटला खानगी शाला में अभ्यास करता बाळको अपनी सरकारी शाला में प्रवेश मेळवी रह्या छे। अनुभवी शिक्षकों द्वारा सर्वांगी विकास लक्षी शिक्षण कार्य करवामां आवे छे।
0: केन्द्रीय गृह और सहकार मंत्री अमित शाह खेडूत की सीधी भागीदारी ने मजबूत बनाने खरीदी में मध्यस्थियों की भूमिका ने दूर करने पर भार दिया। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन नाफेड ना हराजी पोर्टल का शुभारंभ करता श्री शाह ने कहा कि लघुत्तम टेकाने भाव में संपूर्ण लाभ खेडूतों सुधी पहुंचे यह सुनिश्चित करने कठोर और तेलबिया की खरीदी खेडूतों पास की सीधी रीते करनी चाहिए।
2: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसी और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए सीधा किसानों के माध्यम से आए जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: अग्रगण्य में श्री शाह नाफेड ने एक महत्वपूर्ण डिजिटल और खेल केंद्रित पहलों पर शुरू करी। आना खेडों बाड़कों नाफेड कल्याण शिष्यवृत्ति कठोर और गरीबना इन्वेंटरी मैनेजमेंट मे दृष्टि पोर्टल और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ने मजबूत बनाने ईआरपी पोर्टल समावेश कर। कतार में गैस दुर्घटना बाद दक्षिण गुजरात में 4 युवक की भार मिली थी। सूरत में युवक असनी पटेल कतार में एक कंपनी में मैकेनिकल फिटर तरीके फरज बजाव से दुर्घटना समय रातपाड़ी में ड्यूटी पर हाजर हो सनी जी कंपनी में काम करते हो नवसर में 2 युवकों और दमन में 1 युवक पर शामिल हो आ तमाम स्थिति अंगे हजी सुधी कोई स्पष्ट माहिती सामने आई थी। उल्लेखनीय है कि कतार में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इशारा एक तकनीकी दुर्घटना थी हाल राहत और बचाव कामगिरी चालू है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर समिति की 189 बैठक आज अहमदाबाद खाते योजाई। समिति में गुजरात अध्यक्ष लालसिंह वड़पण हेठ योजना बैठक में राज्य में बैंकिंग क्षेत्र में प्रदर्शन की समीक्षा कराई जमा राज्य की कुल थपड़ो 14,65,000 करोड़ ने पार कर रही हो ध्यान आयु जयर कुल धिराण 13,40,000 करोड़ रही। राज्य में क्रेडिट डिपोजिट रेशियो 91.46% पर पहुंचो। समिति द्वारा नाणकीय वर्ष 2026-27 में वार्षिक धिराण योजना ने मंजूरी आप
3: औद्योगिक
0: आर्थिक और सामाजिक विकास ने नवी दिशा अपना 29 और 30 जूने वडोदरा जीएसएफसी यूनिवर्सिटी खाते वाइब्रंट गुजरात प्रादेशिक परिषद वीजीआरसी मध्य गुजरात योजना भागरूपे 29 जून थी 3 जुलाई दरमियान वाइब्रंट गुजरात प्रादेशिक प्रमोशन वीजीआरई योजना। भावनगर जिला ट्रांसफर कमिटी द्वारा 4 सज्जन बालकों ने 12 मजूरी में मुक्त कराया। भावनगर शहर तलाजा रोड विस्तार में आ एक गार्डन रेस्टोरेंट और होटल में तपास हाथ धराई थी। सहायक श्रम अधिकारी द्वारा बालकों की कायदेसर तपास जरूरी संरक्षण की प्रक्रिया हाथ धरा। कच्छ ने गोवा साथ जोड़ती विमान सेवा आज से शुरू थी। अदानी मुंद्रा अंतरराष्ट्रीय हवाई मथक पर आज प्रथम वाणिज्यिक फ्लाइट पर सफल उतरण थे। गोवा की स्टार एयर की फ्लाइटों के साथ वॉटर कैनन सेवा साथ स्वागत कराई। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड नियामक जीत अदानी ने कहा कि हवाई सेवा की शुरूआत थी मुंद्रा में स्थानिक व्यवसाय और प्रवासन ने प्रोत्साहन मिलते। સુરેન્દ્રનગરના દસાડામાં રિક્ષા અને ટ્રક વચ્ચે અકસ્માતમાં થતા 3 લોકો મૃત થયા છે. અમારા પ્રતિનિધિ દિનેશ પરમાર જણાવે છે કે એચવાડા ગામના બસ સ્ટેશન નજીક આ અકસ્માતની ઘટના બની. રાજ્યમાં 2-3 દિવસોમાં ચોમાસું સત્તાવાર પ્રદેશો તેવી હવામાન વિભાગની આગાહી થઈ છે. દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં આજે વરસાદનું યલો એલર્ટ પણ જાહેર કરાયું છે.
3: येलो वार्निंग के साथ हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया गया है. इसमें जो गुजरात के जिला आ रहा है सूरत नवसारी वलसाड डांग दमण दादरा नगर हवेली और सौराष्ट्र का इसमें अमरेली और भावनगर के लिए दिया गया है. बारिश रहेगा 23 से लेकर 29 तक हल्का से मध्यम बरसात का संभावना रहेगा. एक आधो का स्थानों में गुजरात रीजन और सौराष्ट्र का दोनों रीजन के लिए पूर्वानुमान दिया गया है. सौराष्ट्र के मिले मध्य से दक्षिण भारत का जो जिला है इसमें थंडरस्टॉर्म वार्निंग दिया गया है.
0: અમદાવાદમાં રમાઈ રહેલા એશિયન વોલીબોલ ચેમ્પિયનશીપ મેન્સ કપ 2026માં આજે ન્યુઝીલેન્ડે કઝાકિસ્તાનને વિજય મેળવ્યો. દિવસની પ્રથમ મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડે ઓસ્ટ્રેલિયાને 3-2 હરાવ્યું, જ્યારે બીજી મેચમાં ચાઇનીઝ તાઇપે સામે કઝાકિસ્તાને 3-1 વિજય મેળવ્યો. યજમાન ભારતીય ટીમ આજે રાત્રે 9 વાગે બહેરીન સામે મહત્વપૂર્ણ મેચ રમશે. અંતમાં મુખ્ય સમાચાર ફરી એકવાર. કચ્છને દેશના વિવિધ શહેરો સાથે જોડતી વિમાન સેવા આજથી શરૂ. રાજ્યમાં 2-3 દિવસમાં 4-57 હવામાન ખાતાની આગાહી અને એશિયન વોલીબોલ ચેમ્પિયનશીપ મેન્સ કપ 2026માં આજે ભારત અને બહેરીન વચ્ચે મુકાબલો. આકાશવાણીના અમદાવાદ પ્રતિનિધિ પૂરા થયા પછી આપણા સાથે અન્ય પ્રકાશમાં રાષ્ટ્રીય સમાચાર સાંભળી શકશો.

आकाशवाणी अमदावाद वडोदरा। हवे पछीनो कार्यक्रम थोड़ी क्षणों में।

0: आकाशवाणी समाचार संजय परमार वाचे सर्वप्रथम मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित बीजा नागरिक पुरस्कार समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नागरिक देव भवन विचार साथ अधिकारी ने शासन में नागरिकों ने केन्द्र में रखने आग्रह कर। विदेश मंत्रालय जणाव्युं के अमेरिका और ईरान वच्चे करार पछी 11 भारतीय जहाजों होर्मुज समुद्र धुनी में पसार थया। श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारी में भागरूपे सुरक्षा दड़े अमरनाथ बेस कैम्प खाते एक मोक ड्रिल योजी। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशीप में भारतीय शूटर्स से आज 3 चंद्रक जीत्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित बीजा नागरिक पुरस्कार समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान कर। पद्म पुरस्कार देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान एक है। आ 3 श्रेणी में आपवामां आवे पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री। पत्रकार पी नारायण ने साहित्य और शिक्षण माटे पद्म विभूषण और भूतपूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस ने समाज सेवा माटे पद्म विभूषण एनायत कराया। भूतपूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज अभिनेता मामूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक ने पद्म भूषण एनायत कराया। सरकारे आ वर्षे कुल 131 पद्म पुरस्कार की जाहरात करी थी। आमा 5 पद्म विभूषण 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री एवॉर्ड में समावेश। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नागरिकों देव भवन विचार साथ अधिकारी ने शासन नागरिकों ने केन्द्र में रखने आग्रह कर। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में विविध मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव तरीके नियुक्त भारतीय वहीवट सेवा में 2024 बैच ने 183 तालीमार्थी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी युवा सिविल कर्मचारियों ने 2047 सुधी में विकसित भारत के लक्ष्य ने केन्द्र में रखने कार्य करने आग्रह कर। प्रधानमंत्री युवा संघीय कर्मचारियों ने दृढ़ निश्चय नवीनता और नागरिक केन्द्रित शासन साथ राष्ट्र निर्माण पोताने समर्पित करने अपील की। सर्वग्राही सरकारी अभिगम मेटे हाथल करता श्री मोदी कहूं कि अर्थपूर्ण और कायमी परिणामों प्राप्त करने विभागों वच्चे असरकारक संकलन जरूरी छे। विदेश मंत्रालय आज जणाव्युं कि फारस में खाड़ी क्षेत्र में 10 भारतीय ध्वज वाड़ो जहाजों हजू पहुंचे। मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जयसवाले नई दिल्ली में जणाव्युं कि अमेरिका और ईरान वच्चे करार पछी 11 भारतीय जहाजों होर्मुज समुद्र धुनी में पसार थया छे। आमां 3 भारतीय ध्वजवाड़ो क्रूड ऑयल टैंकर एक विदेशी ध्वजवाड़ो एलपीजी कैरियर एक क्रूड ऑयल टैंकर और 6 खातर कार्गो जहाजों समावेश थाय छे। तेमणे आशा व्यक्त करी कि बाकी भारतीय ध्वजवाड़ा जहाजों टूंक समय में होर्मुज समुद्र धुनी में पसार थई शकशे। कतार में थयेला विस्फोट अंगे श्री जयसवाले जणाव्युं कि आ घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत थई हती। तेमणे उमेर्युं कि कुल 66 लोग इजाग्रस्त थया छे अने तेमनी सारवार चाली रही छे। पाकिस्तान में कब्जा हेठना काश्मीर की परिस्थिति पर पाकिस्तान संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणी अंगे प्रवक्ताए कहा कि आवा निवेदनों पड़ोसी देश द्वारा पोतानी निष्फळताओं छुपावा और मानवाधिकार उल्लंघनों की ध्यान भटकावा प्रयास छे। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक अंगे श्री जयसवाले कहूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाले गईकाले ईरान इथोपिया चीन ब्राजील और दक्षिण आफ्रिका तमाम समकक्षों साथ द्विपक्षीय बैठक योजी थी। बीजा प्रश्न के जवाब में श्री जयसवाले कहूं कि बांग्लादेश में देवी देवताओं ने अपमान और विरोध प्रदर्शन अहवाल आया है। तेमणे कहूं कि भारत ने आशा है कि बांग्लादेश सरकार उग्रवादियों ने काबू में रखे और लघुमती समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित कर। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह कहूं कि कलम 370 नाबूद थवा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वप्न साकार थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तेमनी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि आपी। તેમણે કહ્યું કે ડોક્ટર મુખર્જીના યોગદાને દેશની એકતા અને અખંડિતતા જાળવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી। નવી દિલ્હીમાં નાફેડના ઓક્શન પાર્ટીના શુભારંભ પ્રસંગે એક સભાને સંબોધતા શ્રી શાહે કહ્યું કે 23 જૂન ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો માટે વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે કારણ કે આ દિવસે શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીએ રાષ્ટ્રીય એકતા માટે પોતાના જીવનનું બલિદાન આપ્યું હતું। ગૃહમંત્રીએ કલમ 370નો પણ ઉલ્લેખ કર્યો જ્યારે જમ્મુ અને કાશ્મીરને વિશેષ દરજ્જો આપ્યો હતો। તેમણે કહ્યું કે આ જોગવાઈએ પ્રદેશ માટે એક અલગ બંધારણીય માળખું બનાવ્યું જેમાં તેનું પોતાનું બંધારણ ધ્વજ પ્રધાનમંત્રી અને રાષ્ટ્રપતિ હતા। તેમણે નોંધ્યું કે શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીએ વ્યવસ્થાનો સખત વિરોધ કર્યો હતો અને સૂત્ર આપ્યું હતું કે એક દેશમાં 2 બંધારણ 2 ધ્વજ અને 2 પ્રધાનમંત્રી હોઈ શકતા નથી।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का। और मूर्ख जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 7 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: આ પ્રસંગે ગૃહમંત્રીએ ખેડૂતોની સીધી ભાગીદારીને મજબૂત બનાવવા માટે ખરીદી કામગીરીમાં વચેટિયાની ભૂમિકાને દૂર કરવા હાકલ કરી। કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા દાયકામાં કૃષિ ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે। આ કાર્યક્રમ દરમિયાન શ્રી શાહે નાફેડની પણ ઘણી મહત્વપૂર્ણ ડિજીટલ અને ખેડૂત કેન્દ્રિત પહેલો પણ શરૂ કરી છે।

जम्मू काश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में पूरा रूप से सुरक्षा दल है। जम्मू ने अमरनाथ बेस कैंप खाते एक मोब ड्रिल योजी थी। आतंकवाद दरमियान राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी जम्मू और काश्मीर पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल के जवानों संयुक्त रीते बेस कैम्प परिसर में शोध और सुरक्षा अभियान चलाव्यू। केन्द्रीय विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज मंगोलिया विदेश मंत्री बट्टिक्स बेगनमुख उद्योग और खानकाम मंत्री गोंगर बनदियान साथ मंगोलियन रिफाइनरी प्रोजेक्ट ने बांधकाम स्थल की मुलाकात ली थी। सुश्री विदेश संदेश में डॉ जयशंकर कहा कि भारत और मंगोलिया मित्रता प्रोजेक्ट सतत प्रगति कर रहा है। तेमें सामिल विविध टीमों साथ अमलीकरण हेठना कार्य की स्थिति की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए आज स्नातक संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 परिणामों जाहिर करे। हजारों सप्ताह सीयूईटी पोर्टल पर तमाम स्कोर कार्ड चकासी जी सके। एजेंसी अनुसार आ राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा मे 15 लाख उम्मीदवार नोंदी कराई थी और 11 लाख उम्मीदवार हाजरी आपी थी। एजेंसी जानवी कि आ परीक्षा 19 दिवस में तेरह अंतरराष्ट्रीय स्थलों सहित 321 शहर में 35 शिफ्ट में लेवाई थी। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड बीच चैम्पियनशीप में भारत शूटर्स जर्मनी सुहोल में 2 रजत और 1 कांस्य सहित 3 वधु चंद्रक जीत्या। शिवा नरवाले पुरूषों 10 मीटर एयर पिस्तौल जूनियर इवेंट में रजत चंद्रक जीते जबकि युग प्रताप सिंह राठौड़े तेज इवेंट में कांस्य चंद्रक जीते जबकि भारत में डबल पोडियम फिनिशिंग सुनिश्चित थी। भारत पुरूषों 10 मीटर एयर पिस्तौल जूनियर टीम इवेंट में रजत चंद्रक मेरव जय शिवा नरवाल संदीप बिश्नोई।

0: आज के हवा महल में आपको सुनवा रहे हैं प्रेमलता जैन की लिखी नाटिका चांद की किरण।
1: अरे सुनती हो? अरे यहाँ तो खुद बोलता ही नहीं, लगता है सब कहीं गए हैं। नहीं गए नहीं होंगे, यही होंगे। अच्छा चलो मैं आवाज देता हूँ।
2: कौन है?
1: मैं हूँ। क्या हमें देख के तुम मुझे सुनाई भी नहीं दिया। नहीं अभी ही आए हैं, तो तुम शायद अंदर वाले रूम में थी।
2: हाँ मैं भी सुना रही थी।
1: अच्छा छोड़ो, देखो तो ये देखो एक दो बैंक धन्यवाद तुम्हारे लिए।
2: नमस्ते भाई साहब।
1: जी नमस्ते नमस्ते तो हो गई, पर आपसी परिचय अरे क्या परिवार को सुनो सुनो। देखो ये है मेरा विनोदिया यार प्रेमेंद। जब हम छोटे थे तो समझो इन्हें प्राण दो शरीर थे और आगे जी इस प्राण को इसलिए वो इन्हें निकाल के रखा क्योंकि मैं क्योंकि जो की छोटे झगड़ेगा कारण को भी
2: मैं तो खुद दे गई थी। आइए आइए अंदर आइए।
1: अरे अंदर सर
2: बैठे भैया, आप भी बैठे ना, मैं अभी आती हूँ।
1: हाँ हाँ कहाँ जा रही हो?
2: कहीं नहीं, जरा चाय वाय ले आओ।
1: चाय का कष्ट मत कीजिए दादी जी, बैठी ना।
2: अरे वाह, इसमें कष्ट भी ना पैसा, ये तो सौभाग्य है। और फिर आपको तो मुझे दिखाई भी देनी है ना।
1: मुझे समझा, मैं पहली बार मिला हूँ आपसे। वाह क्या कहना है दादी जी, आपको बहुत बड़ी बड़ी दिखाए है। आपने मुझे याद दिलाया तो मुझे मुझे दिखाई देनी
2: है। सुन लिया ना,
1: ये पेमेंट भी कम नहीं। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं बुलाता हूँ रामू को।
2: रामू बाहर गया है, मैं 5 मिनट में आती हूँ, अधिक समय नहीं लगेगा।
1: और तुम्हारे यार प्रेम, काम काज कैसा चल रहा है? काम काज चल रहा है यार। भाई मैं तो सरकार का फुल सर्वेंट हूँ, गुजारे के लायक उसी से मिल जाता है बस। तुम सुनाओ क्या खास है?
3: अपने भी ठीक ही चल रहा है, जीवन बदल ही रहा है।
1: अच्छा तो एक बात बता, तू वहाँ ऑफिस में क्या कर रहा था? भाई वहाँ एक लड़की काम करती है, उसी से मिलने गया। बोलो बैठे, तेरी आदत बिल्कुल नहीं बदली, याद है ना इसी बात पे जवाब रहा। झटकी का झटकी, अगर पहले बात तो सुन ले तेरी।
3: अच्छा सुना है,
1: अरे बड़े मानस बता दो नहीं, परसों लोक नृत्य का कार्यक्रम है।
3: भाई उससे और इस लड़की से क्या संबंध
1: है? संबंध ही तो है, डांस प्रोग्राम के टिकट लेने गया था उसके पास, और कहीं मिले नहीं गए थे। अच्छा है छोड़, कुछ ही मिनटों में इतनी अच्छी अच्छी चीज है, लगता है आप बहुत सुखद हो जाएंगे।
2: अपने मित्र महोदय से जरा पूछिए, उनकी दृष्टि में तो मैं बहुत हाउस वाइफ
1: हूँ। क्या कृष्ण कई बात ठीक है? अरे यार छोड़िए, क्या बात मिले थे।

0: ये तो तुम अपने लिए खरीदे हैं, मुझे रहने दे, आने जाना होगा तो और ले लेंगे।
1: ये ठीक ही कह रहे हैं,
0: नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तुम यहाँ भी दो और दो बच्चे चार टिकट लिए थे, बच्चे ले जाने तो क्या होगा, वैसे दो टिकट और मिल जाएंगे लीजिए ना। ये तो आपको मुझे दिखाई
2: क्यों नहीं क्यों नहीं, अरे साल दो सस्ते में है।
0: अच्छा तो करना ये टिकट दे लो, नहीं तो प्रेम बुरा मान जाएगा। और देखो मेरे को ले आओ,
2: कैसी बातें कर रहे हो तुम,
0: वो तो मैं जानता हूँ। मैं सिद्धांत में पूरा विश्वास रखता हूँ कि मित्रों के बीच रुपए पैसे का संबंध नहीं होना चाहिए, मित्रता की बाधा बन जाता है। रुपया अभी जाओ तो मैं रुपये ले आओ।
1: जी अच्छा,
2: प्रेम खराब कर दिया तुमने, मेरा कभी प्यार भी पैसों से पता रहता है। कितनी मन से टिकट दिए थे मैंने,
0: मैं जानता हूँ दोस्त, मेरी भावनाओं को मैं ठेस नहीं लगाना चाहता था, पर क्या, पर यही कि आज नहीं तो कल ये पैसा प्यार को तोड़ ही देता है। यहाँ पैसा तो आदमी को नहीं मानता है।
1: अरे खैर
0: ये तुम छोड़,
2: अगर गले पे लग जाए कितना बड़ा मेरे पास हो रहा है, तो बिल्कुल वही है, पहले थप्पड़ फिर प्यार। पर इस बार
1: एक बार क्या देखा है, हाँ लीजिए ये लीजिए रुपए,
0: जैसे इच्छा होगी। अच्छा तुम मैं चलूंगा भी,
1: मैंने तो भैया कभी बच्चे वगैरह को लाइएगा।
0: हाँ कोई नहीं है मैडम, अच्छा किसी को अच्छा होगा कुछ नहीं, चल तुझे घर पर बात कर दो।
2: नहीं मुझे अभी बात
0: नहीं है, वही सही चल। अच्छा चल, तू ही जीता मैं आ रहा।

0: सो गया। सोने को जैसे चाहता ही नहीं।
1: कौन है सोना चाहता है?
0: नहीं मामा, सोने का नाम नहीं और सारे दिन उधर
1: भगवान की देन होते हैं।

0: देने निकल पाने का वो तो बच्चों के लिए टिकट आ सकता है और मैं तुम्हारे और अपने लिए दो टिकट नहीं ले सकता।
1: हाँ हाँ नहीं ले सकते, पहले घर का खर्चा तो पूरा हो फिर कहीं
0: फिर कुछ नहीं होगा सजा, तुम्हें तो घर जाना आता ही नहीं। इतना रुपया कमाता हूँ पर नजर तो कहाँ थूक देती हो?
1: थूक देती हूँ
0: मुझसे कम वेतन मिलता है पर कितनी शांति है उसे, खर्च और शौक दोनों पूरे करता है। दीदी तुम्हारे ऐसे
1: ही ये नहीं सोच

0: उसी से मिलाया था और मिल भी गया। आनंदित हो गया, आनंदित क्यों नहीं होगा, बचपन की आदत जो है तो जलता क्यों है। उसने बड़े प्यार से दो टिकट मेरे हाथ में थमाकर कहा, क्या कहा, आपको किसी भी समय किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझे बताइए, आपके लिए काम करके मुझे मेरा भी मन आनंदित हो गया। अच्छा बता दे शाम का क्या प्रोग्राम है, प्रोग्राम क्या नहीं मिलेंगे। शाम को मैं और सरला तुम्हें घर से पिकअप करते हुए सुबह चाहिए, तो ठीक है ना। हाँ ठीक बहुत ठीक, भाभी जी का भी हमारे घर पर हो जाएगा तो भी बात करती है। ठीक पौने छह बजे हम पहुंच रहे हैं तुम्हारे यहाँ। ओके ओके ओके ठीक पौने छह बजे। हाँ चाय पीता हूँ, तुम्हें जल्दी कर तैयार भी नहीं, मैंने तो पहले फोन कर दिया था।
1: तैयार भी मैंने कौन सी योग लगती है, तो मुझे तो तैयार होना भी नहीं है।
0: तैयार हो गई नहीं है, क्या कह रही है तुम? ये
1: ठीक कह रही हूँ, मैं नहीं जा सकती, मम्मी को तेज बुखार है, रो रहा है, चुप नहीं होता। तुम्हें बताओ ना मम्मी को,
0: तुम्हारा सारा जीवन इसी में बीतेगा, मेरे साथ जाने का एक क्षण भी नहीं है तुम्हारे पास।
1: कैसे बातें कर रहे हो जी, तुम्हारे लिए तो जीवन का हर क्षण प्रस्तुत है। परंतु
0: देखो देखो चलना खुश नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना है, जाओ दस मिनट में तैयार होकर चल जाओ।
1: तुम कुछ समझते क्यों नहीं, मैं अगर जा सकती तो क्या नहीं जाती, मुझे को तेज बुखार में छोड़कर तुम कैसे जाओ।
0: मुझे को तेज बुखार में छोड़कर कैसे जाऊँ, जिन मान लेगी डॉक्टर, अभी डॉक्टर साहब को फोन कर देता हूँ, आकर देख जाएंगे।
1: आकर देख जाएंगे, फीस के लिए रुपए कहाँ से आएंगे, पर ही शहर बनकर 50 रुपए थोकती है।
0: क्या कहा लिए भगवान, ये क्या चाहे लोग भगवान मेरे पास में लिखी थी, पर 30 रुपए जिंदगी दो भर हो गई है, तो मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा।
1: घर छोड़कर चले जाओगे, तुम तो जाओगे, मैं ही चली जाती हूँ। भगवान को तुम्हारे जैसे साथ में जुड़ने का क्या काम है, शादी से पहले मेरी चाल के गिरे और फूल से तुम्हारी सीना।
0: हाँ हाँ ठीक है, बात है साहब, तुम कुछ और भी थी, तुम तब मेरे साथ चांद पर जाने का तैयार रहती थी।
1: क्या हो गया,
0: क्या नहीं हुआ है, तुम्हें मेरे भाव और सम्मान का भी कुछ ख्याल नहीं है, तुम भी बोलो प्रेम क्या करेगा, उससे भी कुछ क्या कहेंगी। अच्छा ठीक है, तुम अपने बच्चों को लेकर बैठो, मुन्ने को सुनाओ, मैं चाहता हूँ फिर कभी नहीं आऊंगा। देर हो गई, देर हो गई, भाभी जी कहाँ है, क्या गाड़ी में बैठी,
2: नहीं गाड़ी में नहीं घर में बैठी है।
0: यार क्या बात है, झगड़ा करके आया क्या, और बातें बता।
2: मेरे पास कुछ नहीं गई, मम्मी को बुखार था तो मैं करना नहीं आ सकी।
0: अरे मम्मी को बुखार है तो तू आए थे, मैं फोन कर देता। अच्छा सुनती हो,
1: क्या है, नमस्ते बोलता हूँ, भाभी जी कहाँ है,
2: वो नहीं आ सकती है, छोटा बच्चा बीमार है।
1: बोलता है तो आपने फोन कर दिया होता, हम नहीं आ जाते, प्रोग्राम कैंसिल हो जाता।
2: नहीं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पहले नमस्ते तो स्वीकार कीजिए। अरे बाप रे, तू तो सदैव भाग्यवान रहा है, भाभी जी प्रशंसा की होती है, कौन भाग्यवान है ये तू अच्छी तरह जानता है। कन्या से अधिक सुंदर गुणवती पढ़ी लिखी हमारी भाभी जी, ऊंचे पद की नौकरी, सुंदर बच्चे, अलग किस वस्तु का भाव है तुम्हें।
1: ये बातें सब फिर होती रहेंगी, चलिए घर के लिए, बेचारी भाभी जी अकेली परेशान हो रही होंगी, तो प्रोग्राम करते वो तो घर ही रहते
0: हैं। ये आपने क्या कह रहे हैं, जाने का प्रोग्राम तो कैंसिल नहीं होगा, चिंता की कोई बात नहीं है, सरला सब संभाल लेती है, सब संभाल लेती है, ये बात अलग है, पर तुमने तो हर काम में उनका साथ देना चाहिए।
1: ये ठीक कह रहे हैं भाई साहब, पति के पूर्ण सहयोग के बिना पत्नी टूट जाती है, उसका हृदय टूट जाता है।
2: ये सब ठीक है, मैं सब समझता हूँ, पर क्या करूँ, हर रोज का काम, बीमारी, पैसे की चिंता, ये सब मिलकर दिमाग खराब कर देते हैं, दिमाग तो खराब हो गए,
0: पर भाई मेरे ये सब तो पहले सोचने की बातें थी, अब इसका उपाय क्या है, जितने परिवार के पानी अधिक होंगे उतनी अधिक परेशानियाँ झगड़ा खत्म होगा, पर इसका उपाय भी तो होगा। कौन
1: उपाय, यही कि सब समस्याओं का समाधान आपकी सहयोग ही है, कि दोनों कंधे से कंधा मिलाकर बढ़िए, एक दूसरे को दोषी न मानकर कर्तव्य और भावना में समझा से रखिए।
0: ये ठीक कह रही है, जीवन में बैलेंस होना चाहिए, दोनों परिवार होने चाहिए।
2: कहता तो ठीक है, वास्तव में मैं पालन व्यक्ति को अपना जा रहा था, और यही विचार कानून लगा रही है।
0: अच्छा चल भाभी जी के पास चले,
2: चलो तुम सबको शो में ड्रॉप करके मैं घर जाऊंगा, और तुम सरला के पास।
0: ठीक है, यही मैं समझ सकती हूँ।

तो ये थी नाटिका चांद की किरण, लेखिका प्रेमलता जैन, निर्देशन किया जनार्दन राय ने। आकाशवाणी के पटना केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुनहरी धड़कन कार्यक्रम के प्रयोग लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं ये पहला गीत मोहित चौहान की आवाज में न्यूयॉर्क फिल्म से। संदीप श्रीवास्तव ने इस गीत को लिखा, प्रीतम ने संगीतबद्ध किया।

0: साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर रेड्डी आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विरोध किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रयोग हो गई।
0: सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया। एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, और उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प है कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी की गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजुमदार, संगीत सरिता मई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

मैं और मिसेस खन्ना इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम, श्रेया घोषाल और सुजैन डिमेलो की आवाजों में। साजिद वाजिद का संगीत था।

जाली सिक्स फिल्म का गीत आप सुन रहे थे रेखा भारद्वाज, श्रद्धा पंडित और साथियों के स्वरों में प्रसन्न जोशी ने इस गीत को लिखा था, एआर रहमान ने संगीत पर किया था। और अब कार्यक्रम चित्रलोक में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत है। मोहित चौहान की आवाज में लव आजकल फिल्म का गीत इशरत कमल ने इस गीत की रचना की है, प्रीतम ने संगीत किया।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मगर मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। रमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन में लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी तोड़ रही चुमरिया तोड़े नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: नसीर तो ज्यादा मैंने स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ, तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें तो कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।

0: सुना रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विरोध किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये मेरे मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुखता हो गई।
0: सुनाना भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विहित भारती पर। इस संदेश से पहले आप सुन रहे थे आ देखिए जरा। इस फिल्म का गीत सुनिधि चौहान और शान की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल थे, धुन मिलाई थी प्रीतम ने।

0: नाम से है मुकाबला, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं एस पी बालासुब्रमण्यम की आवाज, साथ ही एस जानकी की आवाज भी है। पी के मिश्रा ने इस गीत को लिखा है, ए आर रहमान ने धुन बनाई है।
1: गोपाला मेरे रखी है रे गोपाला, आया गोपाला

0: चुराने आए गोपाला, मेरी बिंदिया मेरे खाए रे गोपाला।
1: इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रयोग अभी ही संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरते प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में

0: نوشابه شامل رہے صبح 9 کے ساتھ شبان مشرا آکاشوانی سماچار دلی
1: یہ سماچار آکاشوانی سے پرسارت کیے جا رہے ہیں سماچار سندھیا میں آپ کا پھر سواگت ہے कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, उसकी ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहाँ वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वैनेडियम, टाइटेनियम, ब्रोकोलाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों ने राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
3: रास लखान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और उनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
3: ब्रिक्स सदस्य की मीटिंग चल रही है कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की,

0: चीफ हैं उनसे भी आईएनएसए की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध है उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
0: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ उनरवा के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
1: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बक्सिस शेख बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री बोंगोर दमदिनयाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीड के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन ए आई आर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 ट्रिलियन तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हम और कहीं से ला पाएंगे।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माही, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने 1 कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की टिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने

0: की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मनाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा। श्रोता मित्रों, समय छे गुजराती नॉन फिल्मी गीतों नो। आज सांभळशुं सुगम संगीत।
2: गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए प्रस्तुतों से इंतजार।

आगे सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी मुंबई से नमस्कार। आए जब वो जिंदगी में तो खुशियों की पालकी पर बैठ मन चल पाया था एक अनजानी दुनिया में। उनका दामन थाम खुशियों के गुल्लक भरते रहे, उनकी प्यार भरे निगाहों में फूलों की बारिश की, पत्थरों में लिखती जिंदगी की नई वसीयत, और फिर जिंदगी ख्वाब बन गई।

प्रबल खुश नसीब होते हैं जिन्हें मिलती है सच्ची मोहब्बत। मोहब्बत कभी स्वीकारोक्ति के मोहताज नहीं होती। मोहब्बत में जलकर भी अपनी और उसकी राहें रोशन कर लेते हैं। हर किसी के हिस्से में नहीं आती सच्ची मोहब्बत। कुछ लोग मोहब्बत की राहों में चलते हुए भटक जाते हैं। वे नहीं समझ पाते मोहब्बत की गहराई। ऐसे में तन्हाई मुस्कान बनकर

जीवन में यादों का सागर होता है। कुछ दर्द भरी यादें, कुछ खुशगवार यादें, कुछ दर्द भरी यादों के लहरों से हमारा मन चोटिल होता रहता है। कुछ दर्दीली यादें हमें सहलाते भी हैं, हमें सिखाते भी हैं। कुछ प्यारी यादें हमें इस तरह गुदगुदाते हैं।

0: जिनकी साधना ने दूसरे को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: बुनियादी के दुनिया के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल पूरा बदल रहे हैं, मगर बहुत सही है। वो जो भूटन है, उस भूटन को दरबारी के अंदर में जब तक नहीं आ जाए, वो आप कह सकते हैं कि नहीं उस पर नहीं।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को शुरू के अलौकिक संसार में ले जाती है। पंडित रवि मजुमदार, संगीत संहिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 बजे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है, इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मोस जलडमरू मध्य ने जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग के लंबन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।